अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में दिए प्रेरणादायक भाषण को याद किया है। स्वामी विवेकानंद के भाषण को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भाषण भारत की सभ्यतागत विचारधारा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के प्रेरक शब्द आज भी विश्वभर में गूंज रहे हैं। राज्य सरकार इस वर्ष दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 200 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक कार्यक्रम में ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गाय का दूध 61 रुपए और भैंस का दूध 71 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इस वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, जिससे किसानों व पशुपालकों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिमला में आज आयोजित होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। बैठक की अगली तिथि जल्द घोषित की जाएगी। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों के लिए आज राहत की बड़ी खबर है। कीरतपुर मनाली फोरलेन के पंडोह टकोली और ओट खंड के बीच देवड़ और हणोगी की नवनिर्मित सुरंगें आज यातायात के लिए खोल दी जाएंगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: करीब 4,466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस फोरलेन परियोजना में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये दोनों सुरंगें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे शुरू होने से भूस्खलन और जाम के लिए बदनाम 5 से 6 किलोमीटर लंबे घुमावदार हिस्से को बाईपास किया गया है। मंडी से कुल्लू की दूरी 78 किलोमीटर से घटकर अब 60 किलोमीटर रह गई है और सफर का समय भी लगभग 2 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का रह जाएगा। हणोगी सुरंग का वर्ष 2025 की मानसून आपदा में भारी नुकसान पहुंचा था। इसे रिकॉर्ड 60 दिनों में करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन सुरंगों के खुलने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। इन सुरंगों के खुलने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सेब उत्पादों को बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सैनिक कल्याण व स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और बोर्ड के निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल 3 साल का होगा। बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत शिमला जिला के चौपाल विकासखंड की टाणा पंचायत में प्रदेश का पहला महिला संचालित मिनरल वाटर प्लांट हिमजल शुरू किया गया है। इस प्लांट का संचालन व प्रबंधन महिला ग्राम संगठन टाणा से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: ये पहल हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत की गई है। परियोजना के लिए महिला ग्राम संगठन ठाणा को HPSRLM के माध्यम से 13,80,000 रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इस राशि से मिनरल वाटर प्लांट की स्थापना एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। प्लांट का संचालन, प्रबंधन, विपणन, पैकेजिंग तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां महिला ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी। इस परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को अपने क्षेत्र में ही सम्मानजनक एवं स्थायी आजीविका का अवसर मिलेगा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। साथ ही महिलाओं को उद्यमिता, व्यावसायिक प्रबंधन, विपणन, पैकेजिंग और वित्तीय संचालन का व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा। ये पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, कल्याण व समुचित विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ चंबा जिला के पात्र बच्चों तक

0: भावी व समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों की पहचान की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ साथ लाभान्वित बच्चों को योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता निरंतर प्रदान की जा रही है। वर्तमान में जिले में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 92 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे जय हिंद गीतमाला।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: बी प्राक की आवाज में अब आपको ये देशभक्ति गीत सुनवा रहे हैं फिल्म केसरी से।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम जय हिंद गीत माला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे कैसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने

0: बताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वरचंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थीं। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: I am good, sir.
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
3: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful chirping birds.
6: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
3: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
6: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
6: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
6: Like us?
1: Would you like to listen?
6: Yes, sir.
3: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
6: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
6: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back, looking up at the sky.

0: कुमार, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन कुसुम लता, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अजीत होरो। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT, न्यू दिल्ली, इंडिया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
3: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। सच में?
1: वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे, आ जाओ आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 10 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था।

0: रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
1: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने
2: जा रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
0: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
3: होमी। ओ होमी।
4: जी माँ, आती हूँ।
3: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
4: क्या बात है माँ?
3: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
4: जी माँ, बिल्कुल।
3: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
4: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
3: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
4: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
3: अरे
4: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
3: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
4: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
3: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
4: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
3: कुछ नहीं होमी, बस करो।
4: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
5: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
0: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया। लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
0: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
4: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
4: जी जी सर, धन्यवाद।
6: होमी जरा इसे देखो।
4: जी।
6: ये आज का समाचार पत्र है, जरा यहाँ देखो इस पृष्ठ पर, जरा पहचानो तो किसकी फोटो है ये?
4: सर ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
6: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में

0: पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनत कश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
3: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
2: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
3: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
2: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
3: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
4: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
2: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है।

0: लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
0: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाई और बहनों, जय हिंद। सरहद पर तैनात वो वीर जिनके हौसले के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है, जिनकी हिम्मत देश की ताकत है और जिनकी वर्दी देश का गौरव है, ऐसे सभी सैनिक भाई बहनों का कार्यक्रम में दिल से स्वागत। और फिल्म संगीत के इस खास पेशकश यानी सैनिकों के लिए कार्यक्रम में हम एक बार फिर चले आए हैं हर रोज की तरह आपके मनोरंजन के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सैनिक भाई इस गीत को अभी सुन रहे थे। सोचा ना था फिल्म का ये गीत था, और संगीत जब साथ हो तो कुछ पल अपने आप हल्के और खूबसूरत हो जाते हैं। तो आइए एक और प्यारे से गीत के साथ इन पलों को और खूबसूरत और ख़ास बनाते हैं।

सैनिक भाई बहनों, अभी आपने सुना शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत एक विवाह ऐसा भी फिल्म से। सैनिक भाई बहनों, संगीत की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जहाँ भी बजता है, जब भी हम इसे सुने, ये कुछ ना कुछ एहसास साथ लेकर आता है। कभी कोई धुन घर की याद दिलाती है, कभी कोई गीत अपनों के चेहरे सामने ले आता है, और कभी कोई धुन या गीत के शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पुरानी यादों में वापस ले जाते हैं। तो कार्यक्रम की अगली पेशकश ये प्यारा सा गीत छुपा रुस्तम फिल्म से आपके रेडियो सेट्स पर आप ही के लिए।

सैनिक भाइयों, एक तरफ आपका जज्बा, आपका हौसला और देश के लिए आपका समर्पण, और एक तरफ हमारा ये छोटा सा प्रयास कि संगीत के जरिए आपके लिए कुछ पल ऐसे लेके आए जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून भर दे। तो माहौल को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और माहौल में थोड़ा और रंग भरते हैं, और इस शानदार गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए में आगे बढ़ते हैं।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और फिल्मी गीतों के इस सफर में आप पहुंचे हैं हम अंतिम पड़ाव पर। आज आपसे मुलाकात हुई, कुछ गीत आपको हमने सुनवाए, बातें हुई, लेकिन कुछ एहसास ऐसे जो कभी शब्दों से हम बयां नहीं कर सकते। और ऐसा ही एहसास है हमारे दिल में अपने सैनिक साथियों के लिए, जो हर वक्त वतन के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारी भी एक छोटी सी कोशिश हर रोज़ होती है कि हम उनके दिन में कुछ सुकून के पल जोड़ पाएं। तो ये आखिरी नगमा हमारे सभी सैनिक साथियों के नाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं और मीनाक्षी हाजिर हो चुकी हैं स्टूडियोज में बहनों का कार्यक्रम सुनो सखी लेकर। तो सुनिए मीनाक्षी के साथ कार्यक्रम सुनो सखी।

0: लफ्जों में मिठास हो, आवाज में एहसास हो और संग आप सभी का साथ हो, तो लेकर आए हैं हम खुशियों की सौगात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत मुलाकात। नमस्कार सखियों, मैं हूं मीनाक्षी। आज सुनो सखी की खास अंक यानी उड़ान में आपके साथ। तो स्वागत है आप सभी का आज शुक्रवार के इस खास कार्यक्रम में। सितारों से आगे जहां और भी हैं, ख्वाबों के कुछ नए आसमान और भी हैं, जो आंखें आसमान को सिर्फ देखती नहीं बल्कि उसके रहस्यों को समझने का जुनून रखती हैं, वही आंखें विज्ञान की नई राहें खोजती हैं।
1: जी बिल्कुल मीनाक्षी, और आज के इस कार्यक्रम में मैं भी आपके साथ हूँ और सभी सुनने वाली प्यारी दुलारी सखियों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, तो मेरा साथ आज दे रही हैं मेरी प्रिय सखी नीलम।
1: जी मीनाक्षी, पहले तो ये बताइए आप सब कैसी हैं बहने, और आप कैसी हो मीनाक्षी?
0: बहुत बढ़िया नीलम। और आज का जो हमारा विषय है
1: जी,
0: आसमान के सितारों से अंतरिक्ष विज्ञान तक, और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे भारत की जानी मानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम की।
1: जी बिल्कुल सखियों, रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो आसमान में बहुत से टिमटिमाते जो तारे होते हैं वो हमें अपनी ओर जो है वो आकर्षित करते हैं, है ना मीनाक्षी?
0: हाँ, और मन में सवाल उठता है ये सितारे कितनी दूर हैं, ये चमकते क्यों हैं?
1: जी बिल्कुल, और कभी कोशिश की है मीनाक्षी तुमने तारों को गिनने की?
0: नहीं, गिनना तो कई बार करते हैं जब बचपन में तो
1: जी,
0: है ना, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती थी उन्हें गिनना और वो काउंटिंग खत्म ही नहीं होती थी।
1: जी बिल्कुल मीनाक्षी, ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इस सबके पीछे आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं, और यही जिज्ञासा जो है वो हमारे मन में चलती रहती है। और जब अध्ययन और मेहनत जो है शोध का रूप लेती है तो विज्ञान जन्म लेता है।
0: जी, तो डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम का वैज्ञानिक सफर भी इसी जिज्ञासा और खोज की भावना से जुड़ा है।
1: जी मीनाक्षी, तो आज भाई मैं बैठकर सुनने वाली हूँ कि तुम क्या क्या बताने वाली हो सखियों को आज डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम के बारे में।
0: तो चलिए जानते हैं।
1: जी,
0: तो नीलम, डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम जो थी वो भारत

0: सूर्य है वह आकाशगंगा यानी जो मिल्की वे है उससे एक छोटा सा एक आकाशगंगा यानी मिल्की वे उसका एक छोटा सा हिस्सा है, और हमारी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में मौजूद असंख्य आकाशगंगाओं में से केवल एक है।
1: जी, और इतने विशाल ब्रह्मांड को समझना आसान नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने लगातार अपने प्रयासों, अंतरिक्ष उपकरणों, दूरबीनों और आधुनिक तकनीक की मदद से लगातार इन रहस्यों को खोजने की कोशिश की। डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम की वैज्ञानिक यात्रा हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है कि विज्ञान किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है जी हाँ, लड़कियां भी अंतरिक्ष विज्ञान जैसे खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग या अनुसंधान के क्षेत्र में जो है वो अपना भविष्य जो है बनाने का उज्जवल सा एक सपना देख सकती हैं और उसे पूरा भी कर सकती
1: जी
0: हैं।
1: नीलम, बिल्कुल। और बस हमें ज़रूरत है अपनी बच्चियों के हौसले बुलंद करने की,
0: जी
1: उनके सपनों को पंख देकर
0: नहीं
1: नई
0: उड़ाने
1: उड़ान भरने की।
0: जी
1: तो बहुत सी बातें हमें अभी अपनी सखियों से करनी है, लेकिन
0: जी
1: फिलहाल हम अपनी बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, क्योंकि वक्त हो रहा है मनोरंजन का। तो आइए साथ में सुनते हैं ये खूबसूरत सा
0: जी
1: गीत।
0: मीनाक्षी, गीत से पहले हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद गीत सुनवाते
1: जी
0: हैं सखियों
1: चलिए।
0: को।
1: जी बिल्कुल।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

0: इस गीत और विज्ञापन के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में, जहां अब हम बात करेंगे आगे। और हमारी बात है जहां विचारों में सच्चाई हो, जहां जीवन में सादगी हो, जहां सेवा में स्वार्थ नहीं हो और जहां मानवता ही सबसे बड़ा धर्म हो, वहीं से सखियों जन्म लेती है बदलाव की एक नई कहानी। आज का दिन हमें याद दिलाता है एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया। और मीनाक्षी, आगे सखियों को बताओ कि कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: जी, तो मेरी सखियां इस पहेली को जानने की कोशिश कर रही होंगी, तो आज उन्हें बता दें कि बेहद ख़ास दिन हमारे लिए है, क्योंकि आज है विनोबा भावे जी का जन्मदिवस। और विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गोगोदे गांव में हुआ था, और उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। बचपन से ही उनके मन में आध्यात्मिकता, अध्ययन और समाज के प्रति गहरी संवेदना थी।
0: जी, और वे केवल पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने जो है अपने जीवन को समाज की सेवा के माध्यम से बनाया और समाज की सेवा में ही अपने जीवन को उन्होंने समर्पित भी कर दिया।
1: और नीलम, वो जो विनोबा भावे जी थे, महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वर्ष 1916 में वे गांधी जी के संपर्क में आए और आगे चलकर उनके प्रमुख अनुयायियों में शामिल हुए।
0: जी बिल्कुल, अपनी सखियों को हम ये भी बता दें कि गांधी जी की सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को विनोबा भावे ने अपने जीवन में उतारा, और वे मानते थे कि समाज में वास्तविक परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं बल्कि मनुष्य के विचारों और व्यवहार में परिवर्तन से आता है।
1: बिल्कुल, है ना। और विनोबा जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वे ऐसी स्वतंत्रता चाहते थे जिसमें गरीब, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान और अधिकार मिले।
0: जी बिल्कुल।
1: उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो था वो था भूदान आंदोलन।
0: जी, सन 1951 में तेलंगाना में एक गांव में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और विनोबा जी गांव-गांव पैदल घूमते थे और जीवन जो ज़मीन के बड़े बड़े मालिक हैं उनसे अपील करते थे कि वह अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन लोगों को दान करे जिनके पास, जिनकी आर्थिकी बहुत कमज़ोर है और जिनके पास रहने के लिए अपना आश्रय स्थल नहीं है।
1: बिल्कुल। और गांव का नाम था पोचमपल्ली। उनकी इस अपील का असर हुआ और लोगों ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देने के लिए आगे आना शुरू किया। इसी से जन्म हुआ भूदान आंदोलन का, और इसके बाद उन्होंने ग्रामदान की अवधारणा को भी आगे बढ़ाया।
0: जी, उनका सपना था कि गांव केवल रहने की जगह ही ना बने बल्कि एक ऐसा समुदाय बने जहां लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें, और जितने भी रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें भी एक दूसरे का हाथ बटाएं, और साथ ही साथ संसाधनों का न्यायपूर्ण जो है वो भी उपयोग वहां हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वे गांवों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने पर जोर देते थे। विनोबा भावे का जीवन हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए धन, दौलत या शक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है उच्च विचारों और उन्हें अपने जीवन में उतारने की।
0: जी,
1: तो आज विनोबा भावे की जयंती पर हम उन्हें याद ही ना करें बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का भी प्रयास करें।
0: जी बिल्कुल मीनाक्षी, और हमारी सभी जो सखी सहेलियां इस वक्त कार्यक्रम सुन रही हैं, और सखी माता का रूप है, औरत है ना, और हमारे मन में ममता वैसे हर किसी के लिए होती है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी, हर किसी की मदद करें, हमारे घर कोई आए वो भूखा ना लौटने पाए। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं भाई अपने जीवन में इन सब संस्कारों को हमने अपने पास जीवित रखा है, और कोशिश हमारी रहती है कि हमारे परिवार के सदस्य जैसे बच्चे हैं उनको भी हम ये संस्कार दे पाए, है ना।
1: जी, तो है ना, तो हम भी अगर उनके विचारों से सहमत हैं तो जरूरी है हमारे लिए भी कि छोटे छोटे ऐसे अच्छे विचारों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को सिखाएं और जीवन में आगे बढ़े।
0: हम भी आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी। अब एक गीत सुन लिया जाए, सुनवा दिया जाए सखियों को।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: गीत के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं मैं और नीलम सुनो सखी के आज के इस खास अंक यानी उड़ान में, जहां आज हमने बात की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम और विनोबा भावे के जन्म दिवस पर। और
3: जी मीनाक्षी, अब जाने का वक्त होता ही आया है लगभग, तो भाई रसोई में नहीं घुसने वाली आज?
2: हाँ हाँ बिल्कुल नीलम, क्योंकि जाने से पहले कुछ है ना स्वादिष्ट सा हम
3: बिल्कुल
2: खाने के साथ बना
3: ले। पानी आ रहा है सुनने से पहले ही मुंह में, और सखियों को भी आ ही रहा होगा क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज तुम लेकर आती हो। आज क्या बनाना सिखा रही हो?
2: जी तो आज मैं बना रही हूँ नीलम स्वादिष्ट सा ना मिर्च का अचार।
3: वाह क्या
2: तो
3: बात है,
2: आज दाल चावल तो बने और मिर्च का जो अचार है वो मतलब सोने पे सुहागा का काम करने वाला है।
3: बिल्कुल, तो रेसिपी बताइए।
2: जी बिल्कुल, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले 250 ग्राम हरी मिर्च को अच्छे से धोकर सुखाकर डंठल अलग कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है।
3: जी
2: अब हम करेंगे इसका मसाला तैयार। तो
3: जी मसाले में क्या क्या डलेगा मीनाक्षी? मेरा हाथ जरा रसोई में थोड़ा सा तंग है, खाना वाना मैं बनाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं बनाया जाता
2: जी है ना, तो अचार अचार मतलब चलो होता है कभी कभी। तो इसके लिए हमने क्या किया है नीलम की एक चम्मच सूखा जो धनिया है वो लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच काली सरसों, एक छोटा चम्मच सौंफ। इन सभी मसालों को हम हल्के से भून लेंगे है ना, ताकि इनकी खुशबू अच्छी आए, अच्छा सा फ्लेवर कर देंगे हमें। और भूनने के बाद ठंडा होने पर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, फिर करेंगे गैस ऑन, उस पर रखेंगे कढ़ाई और दो बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे और सभी मसाले हम तेल में डाल देंगे और जो हरी मिर्च टुकड़ों में काट कर रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक बर्नी यानी कांच के जार में इसे हम डाल देंगे। खटाई के लिए आप कुछ भी डाल सकती हैं, सिरका डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद 2 से 3 दिन अच्छे से धूप लगाने के बाद सखियों हमारा ये मिर्च का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए।
3: बिल्कुल मीनाक्षी, अब इसे दाल चावल

0: के साथ खाइए या तो आप सिंपल पराठा बना के भी खा सकते हैं, इसका आनंद
1: चपाती के साथ खाइए, है ना, जो भी आपको मतलब ये स्वाद जो है वो दोगुना कर देता है हमारे खाने का,
0: खाने का स्वाद आपने बढ़ा दिया मीनाक्षी आज।
1: तो चलिए, और हमारी सखियों से भी वही अपील है कि खुद भी बनाइए और परिवार में भी सबको खिलाइए।
0: जी तो, बिल्कुल मीनाक्षी ने रेसिपी बता दी है, अब बनाना जिम्मेदारी है सखियों की और मैं भी कोशिश करूंगी, और मीनाक्षी सबसे पहले तुम्हें खिलाऊंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए
0: तुम बताना मेरा रिजल्ट और हम आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक गीत जो है वो सखी सहेलियों को और सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे और नीलम को दीजिए इजाजत।
1: जी प्यारी सखियों
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजरिशकिन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: है।
1: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: Take to the world as a trusted partner.
1: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है।

0: will also go to polls on the 6th of October. India has crossed the significant milestone of 80 lakh human papillomavirus HPV vaccinations, marking another major step towards strengthening preventive healthcare and protecting against HPV infection and HPV-associated cancers. The Ministry of Health and Family Welfare said every vaccination brings India closer to a healthier and cancer-free future for its daughters. In the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mo Chi in China this afternoon at 2:15 p.m. IST. And with that, we end this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: तभी आप सुन रहे थे लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बपी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफ़र में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़ बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान हैं, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबा पर लाऊं या नहीं। हमारी एक श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है, उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहाँ पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ, एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ, और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक

पहुंच चुके हैं। उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं। और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है। और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे। जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। हवाओं में घुली खुशबू, खिलती कलियां और मुस्कुराता मौसम, सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पर भी दिखती है और हमारे लिए तन मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य में चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये। और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही, जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आँखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ़्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है, ये भी मुझे बताएं।

तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र रावल ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं, साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 6 गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, ये गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए, कोई बात नहीं, ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे। नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटें। जी हाँ बिल्कुल।

0: साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाएँ तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढ़ूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियाँ मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूँगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को

0: श्रुति कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाएं अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूज़िक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन ज़रूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा होती है, इसके ज़रिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफ़ी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहाँ पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

ये सुदास की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी, माता वैष्णो देवी, गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना, बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ

और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती। इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित ज़रूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है। किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में, और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो, और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली, जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो ज़रूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट VBS टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत ही रिश्तेदार रखना होता ज़रूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस ज़रूर हो जाती है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफ़र, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है, कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा 2 से 3 श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतज़ार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मज़ा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो ज़िंदगी को और सकारात्मक नज़ीरे से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्यार ज़िंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज़्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है,
1: कह

फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे और इस गीत के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। आज का सुरीला सफ़र आप सुन रहे थे अनुराधा के संग।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 45वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर जब विवाद खड़ा हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम के संदर्भ में एक असाधारण घटना भारत के बाहर घटी। वो ऐतिहासिक घटना आज भी इतिहास की दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है, और इस घटना के शिल्पकार थे महाराष्ट्र के कुछ देशभक्त खिलाड़ी। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में घटी। ১৯৩৬ में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
1: Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
0: उस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक संस्था के कसरतबाजों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति, योग तथा शारीरिक शिक्षा के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के समय हुए मार्च पास्ट में भारतीय दल ने अपना ध्वज फहराते समय यूनियन जैक के बजाय तिरंगा ध्वज फहराया था। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों के निमित्त हुए कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम गीत गाया था। इस दल का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर सिद्धनाथ काणे ने किया था।
2: हमारा देश पराधीनता में था, तब विदेश में इन खिलाड़ियों ने अपने तिरंगे झंडे और वंदे मातरम के माध्यम से भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने उजागर किया। वंदे मातरम के कारण देशभक्ति की भावना सामान्य नागरिकों की तरह ही कलाकारों और खिलाड़ियों में भी पैदा हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले और आज भी व्यायाम के प्रसार का काम निष्ठा से चला रहे 110 साल पुराने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज भी वंदे मातरम गायन की परंपरा को आदर के साथ आगे जारी रखा है। ये है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संगीत शिक्षक श्री इंगले द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम गीत के बाद के अंतरों पर आपत्ति जताई गई थी। फिर भी वंदे मातरम शब्द या उसके उद्घोष का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। 1941 में मुंबई से गुजराती भाषा में वंदे मातरम नाम का अखबार निकलने लगा तो 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस नारे ने आंदोलनकारियों के मन में सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया।
1: दूसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे, तब भी आर्थिक मंदी में फंसे अंग्रेजों को भारतीय सेना की मदद तो चाहिए थी, पर उसके बदले स्वतंत्रता देने के लिए वे अनुकूल नहीं थे। चर्चिल जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर भारत और यहाँ के पूजनीय नेताओं का उल्लेख अपमानजनक तरीके से करता था। इस आंदोलन के दौरान होने वाली हर सभा में वंदे मातरम के नारे सागर की लहरों की तरह उमड़ते थे। अंग्रेजों की गोलीबारी, आंदोलनकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज जैसे अंग्रेजों के आतंक के हथकंडे जारी थे। चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस इन्फेंट्री की एक टुकड़ी, जो ब्रिटिश शासित भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इस टुकड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की योजना में शामिल होने की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ लगी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सैन्य पुलिस ने लगभग 10-12 विद्रोहियों को दिनांक 18 अप्रैल 1943 को पकड़कर सैन्य अदालत के सामने खड़ा किया। 6 जुलाई और 5 अगस्त 1943 को बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में इन आरोपियों की जांच हुई और 9 बंगाली युवा सैनिकों को फांसी दे दी गई। मद्रास की जेल में फांसी के फंदे में गर्दन डालने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए मातृभूमि का जय जयकार किया। 27 सितंबर को 21 से 25 वर्ष की आयु के ये 9 युवा शहीद हो गए।

0: 1942 के इस काल में महात्मा जी के नेतृत्व में सारा भारत इस अंतिम लड़ाई को मन ही मन निश्चय कर करेंगे या मरेंगे की भावना से स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ा था। इसी दौरान अंग्रेजों की नजरबंदी में रह रहे सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर भारत से बाहर निकल गए। 1937 में वंदे मातरम के संबंध में कांग्रेस ने एक समिति स्थापित की थी। मुसलमानों की आपत्तियों के कारण वंदे मातरम की काट छांट को इस समिति ने मान्यता दी। बाद के समय में सुभाष चंद्र मन से भी कांग्रेस से दूर चले गए।
1: भारत से बाहर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की धुरा संभाली। सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज के कारनामों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वंदे मातरम का स्थान कायम रहा। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारियों की संस्थाओं ने वंदे मातरम शब्द का ही समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की भी वंदे मातरम पर अपार श्रद्धा थी।
0: आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र द्वारा किए गए भाषण के बाद वंदे मातरम की ध्वनि मुद्रिका प्रसारित की गई। आगे चलकर यही संगीत रचना आजाद हिंद फौज में मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की गई। इस संगीत रचना के रचनाकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य।

भारतीय बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत के कई बुजुर्ग फिल्मों की ओर मुड़े। न्यू थिएटर्स के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तिमिर बरन भट्टाचार्य थे। तिमिर बरन भारत के पहले गिने चुने शास्त्रीय वादन करने वाले सरोद वादकों में से थे। शास्त्रीय वाद्य संगीत में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने

0: सरोद वादन की शिक्षा ली थी।
1: देवदास इस कुंदनलाल सहगल अभिनीत फिल्म के उनके द्वारा दिए गए संगीत को लोकप्रियता मिलने के बावजूद वे फिल्मी दुनिया में नहीं रमे। बैले जैसे समूह नृत्य के लिए, नृत्य नाटिकाओं के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। सिंफनी और पॉलीफोनी जैसे प्रकार हमारे शास्त्रीय संगीत में तो नहीं है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के कारण भारतीय राग रागनियों को सिंफनी की तरह कैसे संयोजित किया जा सकता है, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग शुरू किए।

वंदे मातरम की उनके द्वारा बनाई गई रचना को उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी संगीत प्रयोगों का उत्कर्ष बिंदु इस रचना में साधा गया है। दुर्गा राग में बंधी ये संगीत रचना बंगाल के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत से अलग है। वंदे मातरम को संगीत देने वाले शुरुआती दौर के संगीतकारों में से अधिकांश बंगाल या महाराष्ट्र के ही संगीत विशेषज्ञ थे। रविंद्रनाथ की संगीत रचना बंगाल में लोकप्रिय थी ही, फिर भी उससे अलग अधिक जोशीली और मार्चिंग सॉन्ग के लायक तालबद्ध संगीत रचना तिमिर बरन ने की। वंदे मातरम की उपलब्ध संगीत रचनाओं में से सर्वोत्तम संगीत रचनाओं में एक ये रचना है।

0: नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र लड़ाई खड़ी की। अंग्रेजों को दी गई वो सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। दुर्भाग्य से नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाली आजाद हिंद फौज को भारत की पूर्वी सीमा के पास पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज को मिले जनता के अपार समर्थन के कारण अंग्रेजों को इन सैनिकों को दी गई सजाएं रद्द करनी पड़ी।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 45वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज असल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान

0: व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।

0: दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540, जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विश्वविद्यालय में छात्रावासों के निर्माण में सहयोग करेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास की सुरक्षा के लिए कंटीले तारों की बाड़ लगाने और परिसर में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए परिसर के भीतर ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, महाधिवक्ता अनूप रत्नौर, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज हिमाचल में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में आज दिनभर बैंक बंद रहे और बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले धरने प्रदर्शन किए। शिमला में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि अब भी सरकार और बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से देशभर में बैंकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी।
1: अराउंड 96-97% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री की है आज पूरी स्ट्राइक पे है। आज की जो ये स्ट्राइक है इसके मुख्य दो मांगे हमारी है। पहली जो मांग है हमारी वो 5-day बैंकिंग को लेकर के, और जो दूसरा मुद्दा है वो PLI को लेकर है। ये इमीडिएट कारण बना और इसी को बात को लेकर के आज की जो ये एक सांकेतिक हड़ताल है 3 दिन की, हम जैसे मैंने कहा 28, 29, 30 को करेंगे और उसके बाद हम 26 अक्टूबर से जो है टोटल इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे।
0: धर्मशाला सहित पूरे कांगड़ा जिला में भी आज सभी राष्ट्रीय बैंक बंद रहे। धर्मशाला में बैंक कर्मचारी नेता राजकुमार गौतम ने कहा कि कर्मचारियों के मुख्य मांगों में सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में समानता और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना बहाल करना शामिल है। शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश के गरीब परिवारों को पक्की छत देना सरकार की प्राथमिकता है। पठानिया शाहपुर स्थित मिनी सचिवालय में 9 पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए पहली किस्त के चेक वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे। पठानिया ने बाद में शाहपुर में ही बागवानी विभाग द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को स्मॉल हाइव बीटल से मधुमक्खियों को हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। शिविर में बागवानों को स्मॉल हाइव बीटल से होने वाले नुकसान और इसकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा है कि टीबी मुक्त अभियान के तहत शिमला जिला में जांच और उपचार की दिशा में बेहतर प्रगति हुई है। जिला स्तरीय टीबी मुक्त अभियान समिति की आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला में टीबी से संबंधित विभिन्न प्रमुख संकेतकों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर उपलब्धियां हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में जनवरी से अगस्त तक 28,000 से अधिक लोगों की टीबी के लिए जांच की गई। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त अभियान के बारे में पंचायतों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान 28 टीबी मरीजों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि जिला में 141 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रदेश कांग्रेस के सिरमौर जिला प्रभारी धर्मेंद्र धामी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। धामी ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और कांग्रेस फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार है और इसके लिए सिरमौर जिला में बूथ बूथ पर जाएंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र से हिमाचल को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है नीली अर्थव्यवस्था को नई गति। वाचक है शशि चौहान।
0: देश का मत्स्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है जो विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और तटीय समुदायों के लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन है।

0: एक मान्यता प्राप्त उभरते क्षेत्र के रूप में इसमें उत्पादन, निर्यात, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण निरंतर वृद्धि हुई है। इस क्षमता को और अधिक साकार करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। बीते कल पीएमएमएसवाई के 6 वर्ष पूरे होने के साथ ये भारतीय मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्थिरता और समृद्धि की ओर बदलाव में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में स्थापित हुई है। वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से ही इस योजना ने सुदृढ़ अवसंरचना का निर्माण किया है, नए अवसरों के द्वार खोले हैं और देशभर के मछुआरों तथा मत्स्य पालकों को निरंतर सहायता प्रदान की है। नीली क्रांति योजना के आधार पर पीएमएमएसवाई की परिकल्पना मत्स्य क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में मौजूद निर्णायक अंतरालों को दूर करने के लिए की गई थी। सरकार 20 करोड़ 750 लाख के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने इस योजना के तहत बजट अनुमान 2026-27 में रिकॉर्ड 2500 करोड़ आवंटित करके अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिससे मत्स्य अवसंरचना और आजीविकाओं को मजबूती मिली है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश को भी निरंतर समर्थन दिया गया है। 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान मत्स्य पालन विभाग ने 21,394 करोड़ 88 लाख की मत्स्य पालन और जलीय कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 9,510 करोड़ 89 लाख का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी गई ये मंजूरियां देश भर में अवसंरचना के विकास और मत्स्य क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में सहायता कर रही है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करके आजीविका के अवसर सृजित करके आय में वृद्धि करके निर्यात और सकल मूल्यवर्धन को बढ़ावा देकर मछुआरों की सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करके तथा मत्स्य प्रबंधन और विनियमन में सुधार करके पीएमएमएसवाई ने भारत के मत्स्य क्षेत्र को रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ये एक ऐसी छत्रक योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजना के घटक शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्र इसका पूर्ण वित्त पोषण और कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र घटक अनुवांशिक सुधार, नवाचार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, प्रशिक्षण, जलीय संगरोध, मत्स्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, रोग निगरानी और मत्स्य आंकड़ा प्रणालियों को सहायता प्रदान करना है। ये राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और मत्स्य संस्थानों, मछुआरों की सुरक्षा, FFPO सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को भी मजबूत करता है तथा प्रमाणन, अनुरेखणीयता, प्रत्यायन और लेबलिंग को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना केंद्रीय क्षेत्र की एक उपयोजना है। ये पीएमएमएसवाई के व्यापक दायरे के अंतर्गत संचालित होती है। ये योजना पीएमएमएसवाई के व्यापक उद्देश्यों की पूरक और उन्हें सुदृढ़ करने वाली है। इसका विशिष्ट उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के विकास को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के तहत लागू की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र की एक उपयोजना है। वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित इस योजना का अनुमानित वित्तीय परिव्यय 6000 करोड़ है। ये योजना औपचारिकीकरण को आगे बढ़ाकर बीमा कवरेज का विस्तार करके संस्थागत वित्त तक पहुंच को मजबूत करके तथा मत्स्य क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन और अनुरेखणीयता को बढ़ावा देकर मत्स्य क्षेत्र के संरचनात्मक रूपांतरण को सुगम बनाती है। इसका उद्देश्य मछुआरों, जलीय कृषि किसानों और संबद्ध हितधारकों के लिए वित्तीय सुदृढ़ता, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार एकीकरण को बढ़ाना है, जिससे अधिक संगठित, पारदर्शी और सतत मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित CSS के अंतर्गत गतिविधियों में शामिल हैं प्रौद्योगिकी के समावेशन और बेहतर मत्स्य पालन पद्धतियों के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज पर ये

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से।
0: जी ज्योति जी इंदौर से, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी। बच्चे हैं छोटे,
0: हाँ
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी, सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती हैं, है ना?
1: जी।
0: जी, तो ज्योति जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: नांदेड़ तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा।
0: हाँ हाँ
1: और मम्मी जी है।
0: अच्छा, परिवार है, मतलब भरा पूरा परिवार है।
1: हाँ परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है 5 महीने का।
0: ओ, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ABCD मतलब गण गण गणपति वाला गाना।
0: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से, क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज़ की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी,
1: हाँ।
0: तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और दिवस भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, निशागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमीन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में दीदी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब 350 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरी दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भरत पूरी परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किसका कॉल लगा है? अपना नाम बताइए।
1: कृष्णा लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो
1: जी
0: इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी, खेत में नहीं, घर पे हूँ। और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ हाँ
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: हाँ जाती हूँ जी। मेरी बहू भी है,
0: हाँ हाँ तो वो भी
1: वो
0: जाती
1: भी।
0: हैं।
1: हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं
1: जी
0: आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने
1: जी
0: बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और हेलो सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद कि कभी का नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतज़ार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊँ मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय, आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
0: जी, और
1: हमारे ये कपड़े
0: जी
1: हैं।
0: जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीज़ों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा,
0: जी
1: इसी तरह
0: हाँ
1: जचते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता ये
0: बिल्कुल
1: सारी चीजें।
0: जी,
1: जी
0: इतनी सारी चीज़ें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे आ जा रे।
0: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद
0: जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना?
1: हाँ, निकल जाता है ना दिन भर। तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है।
0: जी, बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा?
1: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले, बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर? परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना? बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े वाले के 2 बच्चे।
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना?
1: हाँ,
0: जी,
1: और साथ में ननद भी रहती है। 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननद भी साथ में रहती हैं।
1: हाँ,
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 2867-0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में, आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने

बच्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार माँ को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर माँ इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है।

नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें देखने वाले की नज़र अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतज़ार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज़ कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का। यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज़ तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज़ में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वो अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी कहानी आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इनोप्रोम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। श्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन की सभी तैयारियां जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। ब्रिक्स देशों के नेता सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई

0: बड़े नेता भाग लेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह समूह सदस्य देशों को अपने अनुभवों और नीतियों की तुलना करने, ठोस व्यवस्थाओं को मजबूत करने और नए अवसर तलाशने का मंच प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री देनिस मितुरोव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के उपायों पर चर्चा की। वित्तीय सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2 से 3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin today held bilateral talks this evening at Bharat Mandapam in New Delhi. The two leaders discussed a range of issues of mutual interest. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during the meeting. Both Mr. Modi and Mr. Putin visited InnoProm exhibition at Bharat Mandapam. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet UN Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. Iranian President Masoud Pezeshkian, President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi, and Vice President of Nigeria Kashim Shettima have arrived in New Delhi for the 18th BRICS Summit. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that India and Iran share civilizational ties marked by robust cultural and people-to-people bonds. Mr. Jaiswal also said that India and Nigeria share close and long-standing ties underpinned by strong people-to-people connections. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today welcomed his Brazilian counterpart Mauro Vieira in New Delhi ahead of the BRICS Summit 2026. In a social media post, Dr. Jaishankar said the two leaders discussed bilateral relations, including ways to enhance cooperation in trade and investment, defense, energy, agriculture and space. The two ministers also

0: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
1: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
0: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
2: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
3: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
6: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
5: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
6: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
5: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी हाँ, आज है बहुत ही खास दिन, आज है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और आज का हमारा सेगमेंट होता है फिल्मी फ्राइडे का। तो आज

बात करेंगे। साल 2013 की बेहद लोकप्रिय फिल्म ये जवानी है दीवानी की। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन। यह फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है, रास्ते में मिलने वाले दोस्त, रिश्ते और खूबसूरत यादें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शामिल करते हैं इस फिल्म का ये पहला गीत।

जी हाँ युवा दोस्तों, यह गीत फिल्म के किरदारों की बेफिक्र जवानी और जिंदगी को खुलकर जीने वाले अंदाज को सामने लाता है। फिल्म की कहानी है कबीर या बनी थापर की। बनी एक ऐसा युवा है जिसके सपने बड़े हैं। वह दुनिया घूमना चाहता है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी ओर है नैना तलवार, शांत पढ़ाकू और थोड़ी संकोची लड़की। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में होती है। बनी और नैना के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हैं, लेकिन शायद यही अंतर उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। फिर कहानी पहुंचती है एक यादगार ट्रिप पर, मनाली। जी हाँ, यहाँ पन्नी नैना और उनके दोस्त मिलकर जिंदगी के ऐसे पल जीते हैं जिन्हें वे वर्षों बाद भी याद करते हैं। तो चलिए शामिल करते हैं एक और प्यारा सा गीत।

यात्रा उसके जीवन में एक नया रंग लेकर आती है। वहीं बन्नी की आंखों में दुनिया घूमने का सपना और भी मजबूत होता जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा दोस्तों एक जैसी नहीं रहती। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, समय बीतता है और बन्नी एक सफल ट्रेवल शो का हिस्सा बनकर दुनिया घूम रहा होता है। दूसरी तरफ नैना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ रिश्ते दूरी से ख़त्म नहीं होते। सुनवाएंगे एक और गीत इसी फिल्म का छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।

0: बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
2: अब सुनते हैं फिल्म का बेहद भावुक और लोकप्रिय गीत कबीरा। जी हाँ, यह गीत रिश्तों, बिछड़ने और मन में छिपी भावनाओं को खूबसूरती से सामने लाता है। आइए सुनते हैं।

फिल्मी फ्राइडे के सेगमेंट में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म के गीत। जी हाँ, कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ तक आती है जब दोस्त फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। इस बार परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, सभी अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पुरानी दोस्ती और पुरानी भावनाएं कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद हैं। नैना को एहसास होता है कि बन्नी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, और बन्नी को जो हमेशा दुनिया घूमने और सपने को पूरा करने की बात करता है, उसे भी समझ आने लगता है कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पीछे छोड़ना आसान नहीं होता। तो चलिए अब माहौल को थोड़ा रोमांटिक करते हैं, फिल्म में खूबसूरत गीत शामिल करते हैं।

0: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
1: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जाँच और दवाइयाँ मुफ्त मिलती है।
0: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ये जवानी है दीवाने सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। यह फिल्म युवाओं के सपनों, दोस्ती, करियर, परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन की बात करती है। बन्नी हमें सिखाता है कि सपने देखना ज़रूरी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ना भी ज़रूरी है युवा दोस्तों। लेकिन नैना हमें यह याद दिलाती है कि ज़िंदगी में रिश्तों और भावनाओं की अपनी जगह है। असल खुशी शायद यही है कि हम अपने सपनों के साथ उन लोगों को भी महत्व दें जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। क्यों सही कहा ना?

अब थोड़ा सा मूड हल्का करते हैं पेश है फिल्मी का ये मस्ती और डांस से भरपूर गीत। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की फिल्मी फ्राइडे की कहानी, ये जवानी है दीवानी, एक ऐसी फिल्म जो याद दिलाती है कि जवानी सिर्फ तेज़ दौड़ने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी को महसूस करने का भी नाम है। कभी कभी ये सारी कहानियाँ कुछ अपनी कहानी जैसी लगती हैं ना। सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाइए और रिश्तों की कदर करना कभी मत भूलिए।

चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से। अब अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 और 42 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर कार्यक्रम मुझांग ग्राइंदियां आप सुनिएगा। आज के कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा फूलों की खेती बाड़ी को कैसे बनाएं फायदेमंद। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा 1999 में रिलीज हुई फिल्म चालबाज के कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कारवां सुरों का। और रात्रि 10:00 बॉलीवुड बीट्स नई फिल्मों से गीत प्रसारित किए जाएंगे। चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत का प्रसारण समय रहेगा।

रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज़ 8:09, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनिएगा। 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ आनंद लीजिएगा मनोरंजन का भी। 8:30 पर सुनिएगा गाने सुहाने। गीतांजलि कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:00। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम दिन में 12:00 और 12:30 पर समय होगा कार्यक्रम सुनो सखी का। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनावों में भाजपा की जीत को कांग्रेस के लिए निराशाजनक करार दिया है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का दुर्ग रहे शिमला जिला में पार्टी का पंचायत चुनावों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में इन नतीजों की गंभीरता से समीक्षा और आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: जनता-जनार्दन का जनमत है, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसको हम एक्सेप्ट में समीक्षा करनी होगी। जयतिराज एक तरह से खा रहे आपका बेस है, चाहे संगठन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को धरातल तक, अपनी स्कीम्स को, योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, उसमें अहम रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रहता है। तो निश्चित रूप में जो नुकसान हुआ है या जो परिणाम आए हैं, इसमें समीक्षा करना आवश्यक है।
0: रोहित ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, इसमें सरकार के 4 साल का कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंत्रिमंडल की बैठक सरकार में किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण स्थगित की गई है। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार जनाधार खो रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब इन चुनावी नतीजों का असर विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। सुरेश कश्यप ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर चुनावी साल में जनता को बरगलाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की चुनावी गारंटी के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब महज 2 लाख महिलाओं को ही 1500 रुपए देने की ही बात कह रही है।
2: जो वायदा प्रदेश की जनता से किया गया था, 22 लाख महिलाओं से किया गया, यहाँ की प्रदेश की जनता से 300 फ्री बिजली देने का वायदा हुआ था, 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष देने का जो वायदा हुआ था, गोबर और दूध का मूल्य जो है वो देने की बात हुई थी और बहुत सारे दूसरे वायदे भी हुए थे, लेकिन ये सारी घोषणाओं का क्या हुआ? और अब जब चुनावी वर्ष में जब 1 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे समय में फिर से जनता के

0: हमने झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इसका कड़ा जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय के चुनाव में देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से अपनी सरकार।
1: मंडी मनाली फोर लेन सड़क पर अब यात्रा और सुगम हो गई है। इस सड़क पर बनी दो सुरंगों दियोड़ हणोगी को आज से यातायात के लिए खोल दिया है। इन सुरंगों के शुरू हो जाने से मंडी से कुल्लू का सफर अब महज एक घंटे में पूरा हो जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: करीब 4,466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस फोर लेन परियोजना में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये दोनों सुरंगें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे शुरू होने से भूस्खलन और जाम के लिए बदनाम 5 से 6 किलोमीटर लंबे घुमावदार हिस्से को बाईपास किया गया है। मंडी से कुल्लू की दूरी 78 किलोमीटर से घटकर अब 60 किलोमीटर रह गई है और सफर का समय भी लगभग 2 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का रह जाएगा। हणोगी सुरंग का वर्ष 2025 की मानसून आपदा में भारी नुकसान पहुंचा था। इसे रिकॉर्ड 60 दिनों में करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन सुरंगों के खुलने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। इन सुरंगों के खुलने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सेब उत्पादों को बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: राज्य वन विभाग की 27वीं खेलकूद प्रतियोगिता आज शिमला जिला के रामपुर में आरंभ हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वन विभाग की महत्वाकांक्षी इको टूरिज्म परियोजना से प्रदेश की आर्थिकी को व्यापक सहारा मिला है। उन्होंने लोगों से पौधरोपण अभियान से जुड़ने और प्रदेश को और अधिक हरा भरा बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। खाची ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 32% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस प्रतियोगिता में 1,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हमीरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार फोतेदार ने आम जनता से स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम के बदलाव के दौरान वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रेणु मनकोटिया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं घर फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है किशोर कुमार ने। और ये संगीत है आरडी वर्मन का।

शिखर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार का साथ दिया था लता मंगेशकर ने और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने और बोल थे गुलजार के। कार्यक्रम का अगला गीत आन मिलो सजना फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये संगीत है शंकर जयकिशन का। आरजू फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है मोहम्मद।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए ₹1,05,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ही आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को अप्रैल फूल में।

सुरमई सांझ कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ये रात फिर ना आएगी फिल्म से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंडियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिए सुनने वाले सारे ही श्रोतियां जो पंच दी तरफा ते राम राम कने आज टियाले पर मेरा साथ दिया करदे हरिया भाई जी तुहांजो भी राम राम
1: राम राम पंच जी। आज देखा बड़े दिनों बाद तुहाने टियाले पर देखा इकट्ठे हुआ कर दे।
0: बिल्कुल
1: और देखा बरसात खाली निकलेगी है ना।
0: हाँ और देखा आज भी यहाँ दे जेडे आसे पासे जेडी से खूब जमा जमा बारिश हुई है ना आर्या भाई।
1: बिल्कुल जी।
0: और देखा ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम च जेडी से बरसात लगातार हुआ भी करती है साढ़े जेडे उपरी क्षेत्र न पहाड़ी क्षेत्र उन्होंने जेडी से ठीक ठाक बरसात जेडी से हुआ करती है ना।
1: बिल्कुल कने देखा थोड़ा बरसाती मतलब टियाले पर बैठने का भी मौका घट लगता क्योंकि सही गल है बरसात लगभग ज़्यादा थी इस बारी भी।
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: बाकी जिया पहले थोड़ा घट हा तो अपने खेतों के कामों कारा च लग रहे रे।
0: जी जी
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आज जड़ी से मुलाकात थोड़े ने बड़े दिन बाद हुई है तो हाँ जड़ा से खूब गपशप भी लगानी टियाले पर और कन्ने कन्ने लोक गीत संगीत भी जड़ा से अपने श्रोते तक पहुंचाना है
1: और
0: ना।
1: देखा जानकारियां भी यहाँ जरूर अपने स्रोतों जो देनी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल और सब तो पहले गल तो हाँ करनी बरसात की क्योंकि दिखा बरसात हुआ करती है साढ़े इलाके च तो इस बीच जड़े से अहाँ जे जेडे खेतर न खासकर मक्की दे खेत न
1: जी
0: जितू की साड़ी जेडी मक्की है कई बार डेई गई है ना
1: जी
0: और से पूरी तरह जेडे से साढ़े खेतरां च बिछी गई है तो तितू जेडा से सड़न रोग लगने दे जेडी से ज़्यादा संभावना होंगी तो उस वास्ते अहाँ जो जालू भी बरखा होंगी तो पानी दी निकासी दा जेड़ा सा जरूर प्रबंध खेतरां च करना जिससे कि साड़ी जेड़ी फसल है से बची रहे है ना।
1: बिल्कुल पंच जी तुम ठीक बोला कर दे कि

0: हुन देखा जियां कणकारी गल हुंदी तां मतलब इक वारी बाही दिंदे तां मतलब तुहें बिच थोड़ा कट भी अगर खेतरां दी देखभाल करगे तां भी मतलब कटाई आरे टाइम तुहें जांगे है
1: जी जी
0: ना,
1: जी
0: तो कुछ ना कुछ तां भी होने रे आसार बनी जांदे।
1: हाँ जी
0: लेकिन देखा जे जियां अपनी मक्की दी फसल ली, धान दी फसल ली,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ये तो एड़ी फसल है देखा कि तुहें जो खेतां बिच रहने पौना,
1: बिल्कुल, रोज जड़ी है
0: रोज
1: सैना जलन
0: जाने पौना।
1: मारना
0: जियां
1: पौंदी है।
0: तुहें देखा सड़ने री गल कीती
1: हाँ हाँ
0: फसल री, तो देखा जे अगर पानी री निकासी नहीं होगी, जियां ज्यादा बर्खा होई है कई बारी, तो जियां अहें चले वगैरह लाए रहे हों बंद भी होई जांदे,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: अगर अहें नहीं मतलब लगातार अपने खेतां दी देखभाल करगे तो मतलब ज्यादा संभावना नहीं अहें रखी सकते कि हां दी फसल जे ऐसे ठीक होंगी।
1: बिल्कुल। और जल जड़े से मक्की दे खेत न साढ़े पानी रहित रहेंगे और साफ सुथरे रहेंगे, तो इसते क्या कि साढ़े जड़ी फसल है सब भी अच्छी होनी। और कन्ने कन्ने दिखा तो आजकल साढ़ी जड़ी घासनी है उत्थू भी जड़ा से गा हूँ पकने दे कगार पर है, तो
0: बिल्कुल
1: इसती भी जड़ा से पानी दी मार जड़ी इसे होंदी है ना। अगर
0: जी
1: ज़्यादा बारिश होंगी तो इसते साढ़ा गा भी जड़ा से थोड़ा खराब होंगे और इसका कालापन जड़ा से इस बिच आई जाता है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखा उस वास्ते यही है कि जियां धुप्पा होंदा
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: जरूर मतलब जेड़ा घा हाँ पशुओं जो खिलाना तो उसको जरूर थोड़ा सुखाई
1: सुकाई
0: लेना चाहिदा।
1: जी जी जी
0: और बरसाती च देखा जियां पशुओं रे बैठने री गल ही तो उत्थे भी थोड़ा जे ऐसा साफ सफाई रखना चाहिए ताकि पशुओं दे बैठने दा जेड़ा स्थान ऐसा भी सुक्का पक्का रहे।
1: बिल्कुल। ता गलबात साड़ी लगातार जारी रहनी है, पर
0: जी
1: हुन हाँ सुनना एक प्यारा दे लोक गीत।
0: जी

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: जीता अहां ए कुछ एक संदेश सुने कने उसते पहले प्यारा दिया लोक गीत भी हरिये भाई अहां सुनया
4: जी।
3: आशा है कि सारे श्रोतें पसंद आया होना और इसते बाद हां फिर दे चलना लोक अपने गलबात दी तरफ। और गलबात च अज अहां गल करनी है फुलां दी खेती जिहड़ी से अहां दे क्षेत्र विच जिहड़ी से कियां फायदेमंद जिहड़ी से होई सकदी है ना।
4: बिल्कुल जी।
3: तां इस विच सब ते पहले गल करिए तां साढ़े ए जिहड़ी फुलां दी खेती साढ़े प्रदेश विच जिहड़ी से काफ़ी पैमाने पर कीती जांदी और साढ़े किसान भाई जिहड़ा से इस विच अच्छा मुनाफा जिहड़ा से कमा करदे न। और इसी चीज़ तों दिखदे होए साढ़े हिमाचल प्रदेश विच जिहड़ा से फुलां दी खेती जिहड़ी से अहां करी सकदे और अपनी आर्थिकी जो होर मजबूत जिहड़ा से करी सकदे न, है ना।
4: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखा सारे ते बड़ी गल है कि जलू अहां ये खेती शुरू करनी तो उस विच अहां सारे ते पहले जी ऐसे ये ध्यान रखना पौना कि अहां केड़े केड़े फुल जे से अपने खेतों विच लगाने।
3: हाँ।
4: तो देखा एक तो देखा गेंदा, गुलाब
3: जी,
4: रजनीगंधा,
3: हाँ जी, हाँ जी,
4: गुलदाऊ, जरवेरा,
3: ये
4: जड़ी किस्म है, ये देखा पंच जी बड़ी अच्छी किस्म है। और सारे ते बड़ी गल ये भी ध्यान रखना पौनी कि इन्हां वास्ते केड़ी मिट्टी चाहिंदी जिसा विच ये फुल जे से अच्छी तरह तैयार हो सकता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और दूजी गल है कि जियां हाँ मतलब ये फुल उगाने रे बारे सोचना या खेती बाड़ी रे बारे सोचना फुलां दी, तो जरूर हाँ बाजार ते जे ऐसे एक तो सही फुलां दा चयन करने पौना, सही बीजां दा चयन करने पौना। और जेड़ा बाजार च इन्हां दी अग्गे भी जियां हाँ खेती करी तो कर लेनी,
3: हाँ हाँ।
4: पर अग्गे बाजार च भी इसकी मांग है कि नहीं है, वो भी एक ध्यान रखने की बड़ी गल है।
3: बिल्कुल हरिये भाई तुम ठीक गला दे। हाँ जो जड़ा से बाजार का जड़ा से मुआइना पहले करना

जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: जी तो इसी प्यारे दे लोक गीत कन्ने साढ़े कार्यक्रम दसवें भी जिहड़ा से तुसीं संपन्न होआ करदा, पर जाने तो पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रहा बिपिन कुमार होर दा, कन्ने प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह होर। हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कन्ने हरिया भाई जो दे इजाजत।
0: अच्छा जी, जय हिंद, जै हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुझांग रहिंदियां, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को

0: मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "Today, BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP, and over 25% of the global trade."
2: Aaj BRICS ke desh vishv ki 50% population, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: The Prime Minister said amid global uncertainties, India today offers a source of confidence for growth and stability. He called for Make in India, Innovate with India and Scale for the World. In his address, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said that during India's chairship, BRICS has been driven by a clear purpose to achieve more balanced trade amongst member nations and to explore expansion of trade and services across the bloc.
3: During India's chairship, we have been driven by a clear purpose to achieve more balanced trade among our countries and to explore the expansion of trade in services across the BRIC family. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India remains committed to ensuring that this cooperation reaches those who form the backbone of our economy. It must benefit our farmers, empower our women in business, and provide greater opportunities for wealth and prosperity to our young entrepreneurs and MSME.
1: Heads of state of BRICS member countries, including Russian President Vladimir Putin, Iranian President Masoud Pezeshkian, and South African President Cyril Ramaphosa, addressed the nation. Earlier in the day, Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin held bilateral talks in New Delhi. The two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts, and India stands ready to assist in peace efforts. President Putin invited Prime Minister Modi to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. The Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluar, during their meeting. Iranian President Masoud Pezeshkian, President of Egypt,

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना करदे सारे ही श्रोतियां दा एक बारी फिरी ते टियाले पर स्वागत है। और मेरे कन्ने ने हरिया भाई जी तुहां भी आई आ टियाले पर एक बारी फिरी ते जिहड़ी सै गप खड़का जिहड़ा सै लगांदे ने, है ना।
1: बिल्कुल पंच जी, कने देखा अज ता मजा ही आई गया, तुहाने इतने दिनों बाद मिले
0: जी जी
1: टियाले पर, देखा सारे सुख दुख होए
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जिहड़े किसान साथी है उन्होंने भी देखा गलबात करने का एक जरिया मिली आंदा जी, अगर मतलब इत्थे टियाले पर अहें इकट्ठे हो जांदे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो देखा फिर यहाँ इस कार्यक्रम बीच भी जे अपने जिहड़े किसान साथी है अपने श्रोता है उन्होंने एक तो लोक गीतां सौगी मनोरंजन करवाना,
0: हाँ जी,
1: और जिहड़ी जानकारियां है नई नई वह भी साझा करनी।
0: जी जी।
1: तो अज जे है देखा है अपने किसान साथियों वास्ते एक होर बड़ी अच्छी जानकारी कि जिहड़े कृषि दे काम काज है उन्हां विच अहंदा जिहड़े बीजां दा जिहड़ा
0: चुनाव है
1: चुनाव रहिंदा
0: है। हाँ जी हाँ जी।
1: उस वास्ते जे ऐसे क्या सावधानियां बरतने चाहिदी बीज खरीद दी वक्त जे है, और इस बारे च यहां जी अपने किसान साथियों जो जानकारी देनी।
0: जी जी।
1: तो देखो सारे ते बड़ी गल है कि सही बोलदे
2: कि अगर ब्यू खरा होगा ना,
0: हाँ जी,
2: तो अगे कुदरती जे ऐसे फसल भी खरी होनी।
0: हाँ जी।
2: तने ब्यू ही तुम्हारा ठीक नहीं होगा ता अगे जे ऐसे तुहें कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो देखा जियां अहां ब्यू खरीदने दी गल करदे सोचदे तो कई बारी अहां जो देखा बड़े सस्ते रेट पर भी जे ब्यू मिली जांदा, पर अहें सस्ते रेटा दे चक्कर च कई बारी इड़ा बीज ले लैंदे जिस दा मतलब अहां जो नुकसान होंदा।
0: हाँ जी।
2: कई बारी अहां दा बीज जे ऐसे खराब हो जांदा, हाँ खराब हो जांदा, कन्ने कई बारी जे असें मतलब जियां बीज खराब होगा तो कुदरती जाली बाहना तो सै अद्धा भी नहीं जे असें लगना मतलब
0: हाँ,
2: पौधे, है ना।
0: बिल्कुल।
2: तो बोलने का मतलब यही है कि

0: आलू बीज खरीदना सारे से बढ़िया ये है कि अच्छी किस्म का हो और
1: बिल्कुल
0: अहां दी मिट्टी के अनुरूप हो।
1: बिल्कुल। इस वास्ते हाँ जो मिट्टी की भी जांच जी समय समय पर करवाना चाहिए, और उसके हिसाब ने ही हाँ जो पता चली जाता कि कुछ फसल जो हाँ लगाई सकते और किस किस्म का हाँ जिहड़ा से उत्तू बी लगाना है ना।
0: जी और देखा दूजी गल है कि जिया उन्नत किस्म का चयन जे असें हाँ जो जरूर मतलब जाली बीज खरीदने जाते वो करना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: अजकल देखा हाइब्रिड बीजा का जे असें मतलब चलन ना तो मतलब उन्होंने हिसाबा ने अहम की मिट्टी जे असें होना चाहिए
1: हाँ जी
0: ताकि अहम की जी मेहनत है बेकार नहीं जाए। और उस वास्ते जे हमेशा जे अहाँ मतलब जो विश्वास पात्र कोई विक्रेता या फिर कोई अधिकृत संस्थाई जिहड़ी बीज बेचने वास्ते किती ते मतलब उस जो मिली आज्ञा कोई है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी
0: तो उन्हें ही जे असें जो प्रमाणित प्रमाणन टैग मिले है वो देखी नहीं अहां जो बीज लेने चाहिए। और दूजी गल
1: जी
0: बीज जे एक्सपायर नहीं ये जरूर ध्यान रखना,
1: हाँ ये तो बड़ी जरूरत कने ध्यान रखने वाली गल है ना।
0: क्योंकि कई बार अहें चाहे बीज बोलें जी ये हाइब्रिड बीज है फलाना है लेकिन जल ही अहें देख दे कि ये तो एक्सपायर हो चुकी रहा
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: मतलब वही गल है कि हर चीज़ रहा जी एक टाइम है मतलब
1: बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल
0: तो अहम जो जरूर कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अहम बीज जे है सोची समझ ने खरीदना और बिल्कुल जेडे विश्वास पात्र अहम दे विक्रेता है
1: जी
0: या कोई अधिकृत संस्था है उन्हें ही बीज लेना।
1: बिल्कुल। और इस दे कने कने हाँ जो अच्छी अंकुरण क्षमता वाला बीज जड़ा से चुनाव करना ताकि साड़ी जड़ी पैदावार है से तिसदी अच्छी जड़े से रहें और उस बीच जड़ी से मात्रा घट ना हो है ना।
0: जी
1: बीज यानी कि स्वस्थ होना चाहिए जिस अच्छा अंकुरण जड़ा से हो ही पाई सके। इस दे
0: जी
1: कने कने बीज जड़ा से रोग और कीट प्रतिरोधी क्षमता वाला जड़ा से होना चाहिए, यानी कि जल वहाँ कोई फसल लगाते हैं तो बीज ऐसा होना चाहिए उस फसल का कि जिससे उस फसल जो घटते घट जड़े से रोग लगने है ना,
0: बिल्कुल जी
1: रोग ना ही लगन, मतलब ऐसा बीज जड़ा से होना चाहिए रोग प्रतिरोधी जड़ा से किस्म हाँ जो बाजार से जड़ी से लेके आना चाहिए। इस दे कने कने शुद्धता दी बीज जड़ी से जांच हाँ जो करना चाहिए कि बीज जड़े से दूसरी फसलें या खरपतवार दे बीजां च जड़ी से मिश्रित ना होना चाहिए, यानी कि शुद्ध होना चाहिए बीज जिस किस्म का हाँ बीज लिया करते उसा ही किस्म का जड़ा से बीज होना चाहिए, कोई और रला जड़ा से नहीं होना चाहिए इस बीच है ना।
0: बिल्कुल जी। और देखा पंच जी एक होर बड़ी गल है कि जियां अहां दी मिट्टी दी तुहें गल भी कीती कि टाइमा टाइमा पर जे ऐसे जांच होना बड़ा जरूरी है
1: जी
0: उस ते ए पता लगी जांदा कि मतलब जेड़ा बीज असें इस मिट्टिया बिच बाई कर दे
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: इस बिच जे इस मिट्टी दी जे उर्वरता इसे ठीक ही
1: जी
0: पीएच ठीक है नमी इस वास्ते जेड़ा बीज अहें बाया कर दे से तीस वास्ते ठीक है या फिर होर कई बार जेड़ा होंदा जे अगर ज़्यादा ही पानी उत्थी इकट्ठा होंदा या कुछ बरसाती जियां असें पहले भी गल कीती ही
1: जी
0: कि मतलब जियां कई बार खेतां च पानी खड़ा रहिंदा
1: हाँ
0: उस ते
1: जी
0: भी जेड़ा अहें बीज है से नष्ट हो जाते मतलब
1: बिल्कुल
0: तो ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान च रखना चाहिए और पानी की जी निकासी उसकी भी व्यवस्था का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और दूजी गल है कि जेड़े अहां दे मतलब मौसम आ उस दे
1: हाँ
0: अनुसार ही अहां जेड़ा बीज का चयन करना चाहिए उस दे अनुसार ही मतलब अहां जो सह फसल बाना चाहिए।
1: बिल्कुल अरे भाई तुम ये बड़ी अच्छी गल दसी कि मौसम और जलवायु के हिसाबे ने अगर हाँ बीज का चयन करके तो उसते साढ़े जी फसल है सै अच्छी पैदावार जी से तिस्चो संजो मिलनी, यानी कि मौसम से साढ़े जेडे खरीफ फसल है या फिर रबी फसल है या जायद मौसम के अनुसार जी से हाँ जो किस्मों का चुनाव जोड़ा से करना चाहिए, यानी कि बरसाती दी जी किस्म होंगे सै अलग होंगे ने सर्दियों दी अलग न गर्मी दी फसल अगर हाँ लगाते हैं, यानी कि यदि सब्जियों की गल करिए तो अलग अलग किस्म ने, यानी कि हरेक मौसम बच्चे जी से अलग अलग किस्म जी सब्जियों के बीजों की होंगी है ना।
0: बिल्कुल पंच जी। और तुहें एक गल होर देखा अपने स्रोतें जो किसान साथियों जो हाँ दसना चाहते कि मतलब जियां फसल बाने रहा कोई भी बीज बाने रहा टाइम आ तो से बिल्कुल हरा सही समय पर जे ऐसे बीज बाना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कई बार अब तुहें मक्की दी गल कर लिया जियां अगर अहें मतलब इस टाइम जियां बत्तर आंदे हुंदी
1: हाँ
0: तो उस टाइम बत्रा ने अगर बी बे गया तो से कुछ और गल है
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: अगर 10 दिन बाद तुहें जी बरसात ज़्यादा उतरेगी
1: जी जी
0: फिर
1: जी जी
0: बीज बन दे
1: हाँ
0: तो फिर
1: हाँ
0: ही से मतलब कुती ना कुती तुम्हारी
1: फर्क
0: फसल च
1: पौंदा
0: फर्क पौना ही पौना
1: हाँ
0: है ना। तो अब देखा अजकल

0: एक तां सारें ते बड़ी गल है कि जियां पहले अपने बैल अहें घरें रखी रहे होंदे थे,
1: हाँ जी
0: उन्होंने अहें खेतीबाड़ी करा है तो मतलब अहें अपने बिल्कुल
1: टाइमर
0: टैमर
1: है
0: जिहा से सारे काम करते थे।
1: बिल्कुल
0: लेकिन अजकल अहें देखा ट्रैक्टरां पर या किसी और सी साधना पर जे ऐसे बीज बाने वास्ते जे खेतीबाड़ी वास्ते निर्भर रहे,
1: हाँ
0: तो कई
1: जी
0: बार ये होंगे कि जी कोई मतलब ट्रैक्टर अहारे पासे नहीं आया टाइम का, किसी औरती गाँव लगी रहा
1: हाँ
0: या
1: जी
0: मतलब 10 दिन 5 दिन लेट हो गया,
1: बिल्कुल
0: तो तिस्ते जे अहां रिया सारिया फसल रा जैसे मतलब शुरू ते ही मतलब नुकसान होना शुरू हो जाता।
1: बिल्कुल
0: तो सारे ते बड़ी गल ए है कि अहां जो बीज बाने दे जे ऐसे टाइम का पूरा ध्यान रखना बड़ा जरूरी आ,
1: बिल्कुल। और
0: चाहे
1: इस
0: बीज भी अहां सही होगा लेकिन
1: हाँ
0: अगर टाइम रहा है नहीं बांगे तो से मतलब बाया नहीं बाया बराबर ही है।
1: बिल्कुल। और इस बीच किसान साथी अगर समय दा पता होगा कि यहाँ पहले फसल लगाई देनी तो इस बीच जी से अगेती किस्म आती है
0: गेती
1: ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: जी
1: कन्ने कन्ने अगर तिना ऐसी योजना की तिना जिड़े से समय दे बाद जड़ा से बीज लगानी तो इस वास्ते पिछेती फसलां भी जड़ी से एन है ना।
0: बिल्कुल हाँ, किसी कारण बस जेड़ा हो गया भी हाँ तू है लेट हो गया है
1: हाँ
0: या
1: हाँ कोई
0: जे
1: और फसल तैयार है
0: तैयार है
1: साढ़े
0: बिल्कुल
1: खेतना च
0: बिल्कुल, तां भी
1: और
0: देखा तुम्हें बड़ी अच्छी गल बोली कि ये भी व्यवस्था है कि पछेते बीज भी यहाँ ल
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: जल्दी बाणी तां भी यहाँ ल गेती गेते आज देखा सारी सुविधाएं। पर सही गल आएगी कि अगर अहें थोड़ा जानकारी ले करी या प्रशिक्षण ले करी कोई भी काम कार शुरू कर दे तो तिस जे नुकसान नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल। और अरिये भाई जी अंत च हाँ इस एक बारी ये बीज दे बारे च एक और गल दस दी कि अगर हाँ बाजारे ते जेड़ा हाइब्रिड बीज लेंदे ना तो
0: जी
1: तीदा बीजोपचार जेड़ा सा पहले ते ही होया होंदा है ना।
0: जी
1: बीजोपचार कित्ते होंदा देना
0: जी
1: पर अगर अहाँ दे घर विच जेड़े से अपना बीज है पारंपरिक बीज अहाँ प्रयोग चला कर देता तिस जो उपयोग करने दे पहले हाँ जो बीजोपचार जेड़े से बड़ा ही जरूरी हो जाता है ना।
0: बिल्कुल, तुम्हारे बोलने का यही मतलब है जी। यहाँ पुराने टाइम च भी बीजा वास्ते जी मक्की है तो ऊन जेड़ी यहाँ फसल लेनी तो उस टाइम ही जी ऐसे मतलब बीज वास्ते लग मक्कियाँ छांटी ने रखी देंदे थे।
1: हाँ
0: पर सारे दे बड़ी गल ये है कि उन्हरा एक देखभाल रखना समय समय पर तीनों चेक भी करना
1: जी
0: कि
1: जी
0: कोई मतलब खराब तो नहीं लगी होने,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: फिर यह जी मतलब 6 महीने अगले साल देख दे ना
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तल ही हो सका से मतलब किती कोई
1: कीड़ा
0: कीटाणु
1: लगी
0: कीड़ा
1: है।
0: लग रहा है ना, तो फिर यहाँ कोई और नहीं आसाधन
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: फिर भी यहाँ सही खेतों से बाई दें बीज तो तिस्ते जी फिर क्या उम्मीद कर सकते।
1: नहीं हो सकता कुछ भी बिल्कुल। तो थोड़ा बोलने का मतलब है कि आजकल सारी बरसात चली है तो अहाँ दे अगली फसल दी जिहड़ी तैयारी है से इन दिनों च ही कर देना चाहिए और अहाँ जड़े भी बीज रखे ने तिना दा जड़ा सा
0: ठंडी
1: बरसात
0: बनाई करी।
1: हाँ बरसात च जड़ा सा डर होंदा कि खराब होने का है ना।
0: हाँ जी हाँ
1: तो उन्हां
0: जी
1: दी जांच जड़ी है अजकल ही कर लैन कि अहाँ आने वाली जड़ी फसल लगानी है इसकी जांच अजकल कर लैन कि साड़ा बीज जड़ा सा स्वस्थ है या नहीं है ना।
0: हाँ, अगर नहीं आ मन नहीं लवा तो मतलब वहां चाहे किती हाइब्रिड होर जेड़ा भी बीज अच्छा बीज ऐसा ही यहाँ खेतों च बाना
1: बिल्कुल
0: तो इस तेजे आ जरूर मतलब अहां जो मुनाफा होने दे भी और अहां दी मेहनत दा फल ताई मिल सकता।
1: बिल्कुल। तो साढ़े जड़ी कुल मिलाई के फसल है तो इसका आधार ही जड़ा से बीज है और बीज का चयन है साड़ा अच्छा होगा तो
0: बिल्कुल
1: साड़ी
0: अहें देखा
1: फसल ही
0: सारे दे पहले एक ही गल की थी जे व्यू खरा होगा तो अगे भी सब कुछ ठीक
1: बस
0: होना,
1: बस सही
0: जे
1: गल
0: व्यू
1: है
0: ही खराब होगा तो फिर अगे जी ऐसे कोई उम्मीद नहीं कर
1: साड़ी
0: सकते
1: मेहनत जड़ी से पूरे साले जड़ी से खराब हो जाती है।
0: खराब हो जाती।
1: तो हाँ आशा करनी कि साढ़े किसान भाई भी जड़े से बीज का चुनाव जड़े से
0: सोची
1: सावधानी
0: समझी
1: करने
0: करी
1: सोची समझी करी करने ताई जड़े से उन्हें दी फसल जड़ी से अच्छी होनी है ना।
0: जी
1: तो साड़ी गलबात त्याड़े पर लगातार चली रहनी है पर हाँ सुनना एक प्यारा दिया लोकगीत।
0: जी

0: जीता है प्यारे दी लोक जानकार सुननी कने इसके बाद हाँ फिर ते चलना जानकारी दी तरफो जानकारी लेके आए ना हाँ अज भेंट वार्ता था सुन दे ने भेंट वार्ता।
1: जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि कृषि में कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको करके हमारा किसान भाई ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकता है। ये ऐसे कार्य हैं जिससे जो है एक अलग से या अतिरिक्त आमदनी जो है हमारे किसान भाइयों को मिलती है। इसमें एक ऐसा ही कार्य है जिसे रेशम कीट उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो ये रेशम कीट उत्पादन क्या है, कैसे किया जाए ताकि जो हमारे किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इस संबंध में जानकारी देने हेतु तो आज हमारे साथ हैं श्री अरविंद मेहता, जो कि रेशम बीज उत्पादन अधिकारी हैं रेशम बीज उत्पादन केंद्र पालमपुर में। तो मेहता जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि जब भी हमने रेशम कीट उत्पादन करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे शुरू किया जाए, कितने कीड़ों से शुरू किया जाए।
2: जी सर, जब कोई भी नया किसान हमारे विभाग से जुड़ता है तो उसको बेसिकली जो है उसकी तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे
1: जी
2: पहली रिक्वायरमेंट यह है कि जो नया किसान हमारे साथ जुड़ेगा उसके पास कम से कम 50 वो शहतूत के पौधे जो है वो जरूरी होने चाहिए।
1: जी
2: दूसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसके पास कीट पालन के लिए रेयरिंग शेड होना बड़ा जरूरी है, जिसका मिनिमम अगर हम डायमेंशन देखें तो 300 स्क्वायर फीट जो है 1 औंस के लिए जो है वो काफी होता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रशिक्षण। बिना प्रशिक्षण के कोई भी किसान जो है इस रेशम कीट उत्पादन में या रेशम जो कीट पालन है इसमें सफल नहीं हो सकता।
1: जी तो जैसे आपने बताया कि रेशम कीट उत्पादन के लिए जो है शहतूत के पेड़ लगाने जो है बहुत अनिवार्य है, 50 पेड़ जो है कम से कम होने चाहिए।
2: जी सर,
1: तो इसके लिए कोई किस्म भी निर्धारित की गई है कि रेशम के पालने के लिए जो है जो शहतूत के पेड़ हैं वो एक खास किस्म के होने चाहिए?
2: बिल्कुल सर, इसमें जो है जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहायता लेता है, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जगह जगह रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो खोले गए हैं और जितनी भी जो विकसित प्रजातियां हैं शहतूत की वो किसानों को जो है वो सस्ते दामों में जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। और बहुत सारी स्कीमें जो है वो चली हुई है, जैसे RKVY है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या SCA के तहत किसानों को कम दामों में या पूरी तरह से मुफ्त रूप से जो है वो पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं और किसानों को पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उन्होंने पौधों को उगाना है और कब कब उनका प्रूनिंग करना है और किस किस सीजन में उनको उन्होंने उगाना है।
1: जी तो 50 पौधे जो हैं कितने साल के होने चाहिए ये तब जो है रेशम कीट उत्पादन का कार्य शुरू करना चाहिए?
2: ये जो पौधे उगाए जाएंगे किसान के जरिए, पौधा कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम पौधे को अगर किसान उगाएगा तो जो पत्ते की पैदावार है उसमें कमी आती है। इसमें बहुत सारे पहलुओं को जो है वो ध्यान में रखा जाता है।
1: जी तो उसकी बढ़वार सही हो और उसमें किस तरह के पत्ते लगे होने चाहिए?
2: जी सर, इसमें जो है कम से कम जो पौधा, जैसे 1 साल का पौधा किसान उगा देता है उसके बाद 3 साल के बाद जो है किसान उस पौधे से पत्तों को ले सकता है और अपना कीट पालन का कार्य जो है वो शुरू कर सकता है। उसके लिए किसान को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि किस तरह से फार्म यार्ड मैन्यूर जो है उसको मिक्स करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की कितनी औसतन मात्रा होनी चाहिए ताकि एक जो है प्रचुर मात्रा में जो गुणवत्ता से परिपूर्ण पौधा है वो उसको किसान को मिले और उसके जो पत्ते हैं उनमें भी पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है।
1: जी तो रेशम के कीड़े जो हैं कितने होने चाहिए, कितने नंबर में होने चाहिए, कितने गिनती?
2: जी सर, अमूमन जो है वो किसान को विभाग जो है एक रेयरिंग शेड जो है वो बना के देता है। अलग अलग स्कीमों के तहत पैसा आता है और रेयरिंग शेड जो है वो डिपार्टमेंट खुद बना के देता है।
1: जैसे आपका विभाग खुद बना के देता
2: जी
1: है।
2: सर जी। उसके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे 1 लाख है, 75,000 का केस है, ये अलग अलग केसेज हैं। इसमें क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, 80% जो कंट्रीब्यूशन है रेयरिंग शेड के लिए, 80% जो पैसा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देती है,
1: केंद्रीय जो हिस्सा जो है
2: केंद्रीय रेशम बोर्ड देता है।
1: जी
2: और 10% जो है वो बेनिफिशियरी का शेयर होता है, जो किसान होगा 10% वो देगा और 10% जो बच गया वो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार देती है।
1: राज्य सरकार देती है
2: जी,
1: जी। तो इस तरह से जो हमारा किसान भाई कार्य शुरू कर सकता है,
2: जी
1: लेकिन उससे पहले जो सिखलाई जरूरी है
2: जी,
1: तो
2: जी।
1: आपका विभाग सिखलाई भी देता है,
2: प्रशिक्षण देता है, जगह जगह जो है कैंप्स लगाए जाते हैं अलग अलग स्कीमों के तहत, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स का प्रावधान किया गया है, उसमें किसान का अपना 1 भी पैसा खर्च नहीं होता है, सारा जो खर्च स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहन करती है,
1: राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहन करती है। जी तो अगर हमारा किसान भाई इच्छुक है कि वो रेशम कीट उत्पादन का कार्य करना चाहता है
2: जी,
1: तो आपसे कैसे राबता कायम कर सकता है और उसका प्रशिक्षण है कैसे ले सकता है?
2: हमारे डिवीजन के जगह जगह जो है वो सरकारी रेशम केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं, वहाँ पे कैंप्स का आयोजन किया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती है और जो डिफरेंट स्कीम्स के तहत

0: पैसा आया होता है उनको कैंप्स के जरिए लोगों को बताया जाता है और नए फार्मर को अपने साथ जो है वो जोड़ा जाता है।
1: जी, तो इसके लिए उसको कोई पैसा बहन नहीं करना होता है, जैसे पालमपुर में अगर आपके प्रशिक्षण करवाते हैं तो कितने सदस्यों का होता है ये ग्रुप, और साथ में जो है रहने की सुविधा जो आपका विभाग
0: रहने की सुविधा विभाग देता है,
1: और खाने की
0: सुविधा सब कुछ विभाग करता है,
1: सब कुछ विभाग करता है। सिर्फ किसान भाई को वहीं आके रहना होगा, कितने हफ्ते भर की
0: टाइम देना होता है, हफ्ते भर की भी होती है, 15 दिन का भी होता है शेड्यूल, कई बार हम अदर स्टेट में भी भेजते हैं फार्मर,
1: दूसरे राज्यों में भेजते हैं।
0: जी सर,
1: तो दूसरे राज्यों में कहाँ भेजते हैं?
0: जैसे देहरादून हो गया, बेंगलोर हो गया, इत्यादि जगहों में भेजा जाता है।
1: जी, तो उसके लिए जो है उसको अपना किराया बहन करना पड़ता है या
0: किसान को सिर्फ समय देना होगा, समय, बाकी जो है A to Z जो खर्चा है वो विभाग बहन करता है।
1: जी, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो कार्य करना है उसके दौरान जो है किस तरह की एहतियात रखनी चाहिए, जब रेशम कीट उत्पादन शुरू कर दिया है।
0: इसमें जो डिस्क इन्फेक्शन होता है जिसको निष्क्रमण बोलते हैं हिंदी में,
1: जी,
0: वो उसका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। तो जो डिस इन्फेक्शन, जो निष्क्रमण की प्रक्रिया है जो कि विभाग की सहायता से की जाती है, जिस भी रेयरिंग शेड में किसान जो रेयरिंग करेगा उसका पूरी तरह से डिस इन्फेक्शन होना चाहिए।
1: जी, यानी कि फर्श जो है साफ धुला होना चाहिए।
0: ये अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर्मालिन हो गया, सैनिटेक हो गया, अस्त्रा हो गया, विभाग के पास फार्मूलाज होते हैं, एक्सपर्ट किसानों को फार्मूलाज बताते हैं किस तरह से घोल तैयार करना है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और विभाग के कर्मचारी भी घर घर जाते हैं और अपनी देख रेख में जो है वो पूरा निष्क्रमण का कार्य करवाते हैं।
1: जी, तो उसके दौरान जो है पत्ता कितना डालना चाहिए कीड़ों को, तरीकाकार क्या होना चाहिए, कब कब डालना चाहिए?
0: ये जो है इसकी 4 मोल्ट होती है, जो रेशम कीट होता है 4 मोल्ट होती है और 5 इसकी अवस्थाएं होती है। तकरीबन ये 25 दिन का काम होता है फार्मर के पास।
1: कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं?
0: फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस तरह से अवस्थाएं होती हैं और ये मोट में जाता है और अल्टीमेटली जो है वो कुकून बना देता है।
1: कुकून बनाने के बाद जो है फिर जो है उसमें कीड़े बीमारियां ना हो उसमें भी कुछ दवाइयां डाली।
0: जैसे ही कुकून बन जाता है उसके बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको मार्केटिंग किया जाता है।
1: सुखाने का तरीका कार क्या होना चाहिए? धूप में सुखा देते हैं
0: या हम
1: कितने दिनों तक सुखाना चाहिए?
0: 2-3 दिन तक में हो जाता है, या फिर हमारे पास ड्रायर भी होते हैं, कई बार मौसम खराब होता है तो ड्रायर में डाल के सूख जाता है और किसान अपना जो है उसको बेच सकता है, मार्केटिंग कर सकता है।
1: पहले तो हमने देखा था कि कुछ लोग जो है इसको जो गर्म पानी में डालते थे,
0: जी,
1: उबलते हुए पानी में, वो भी प्रक्रिया थी?
0: वो प्रक्रिया धागा बनाने की प्रक्रिया है।
1: अच्छा,
0: अगर उसका कुकून से आगे धागा बनाना है तो उसको फिर गर्म पानी में डालना पड़ेगा, उसकी डीफ्लॉसिंग करनी पड़ेगी, फिर वो थ्रेड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो फिर आगे रीलिंग, वो अलग कंसेप्ट है, वो पोस्ट कुकून सेक्टर, कुकून बनने के बाद धागा तैयार करना है, जैसे आगे धागे से रेशमी साड़ियां बनती हैं।
1: जी, तो ये प्रक्रिया अलग से है। यहाँ जो है सिर्फ हमारे किसान भाई जो है सिर्फ
0: किसानों ने प्रक्रिया तक ही कुकून बनाना है, फिर उसको बेच देना है और अपनी जीविका कमा लेनी है।
1: जी, ककून की किसान भाई को सही दाम मिले उसके लिए भी जो आपका विभाग जो है किसानों की मदद करता है?
0: जी सर, जगह जगह गोष्ठियां लगाई जाती हैं, जब भी ककून परचेज का काम शुरू होता है तो विभाग पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है ताकि किसान को उसका उचित मूल्य जो है वो मिल सके, और विभाग के जो कुशल कर्मचारी होते हैं वो उसका ग्रेडिंग करते हैं ककून का, और ग्रेडिंग के हिसाब से किसान को जो है वो पेमेंट कर दी जाती है।
1: जैसे टूरिज्म के बढ़ावे के लिए जो है शीतकालीन कार्निवल जो है अलग अलग जगह पे हिमाचल में चलाया जाता है, तो इसी तरह से जब ककून तैयार होता है व्यापारियों को बुलाने के लिए, लुभाने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं?
0: जी सर, जैसे नूरपुर में सिल्क मिल है, यहाँ सिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट जो हिमाचल में बनते हैं वहाँ पे उनका प्रदर्शनी लगाई जाती है, बाहर से बुलाया जाता है, बेसिकली साउथ से आते हैं यहाँ पे जितने भी व्यापारी आते हैं और सारा ककून जो है उसको खरीद के ले जाते हैं।
1: तो पिछले साल जो है ककून की मांग कैसे रही और कितना भाव जो है किसान भाई को मिला?
0: जी, हमारे पालमपुर में जो है वो ये ककून जो है वो रेशम बीज उत्पादन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, तो उसको ड्राई करने की जरूरत नहीं होती है।
1: अच्छा,
0: उसको ग्रीन कोकून बोलते हैं, उसी से जो है वो किसानों से खरीद लिया जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है, कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा।
1: अच्छा,
0: सरकार खुद खरीदती है, और इसका जो दाम है तकरीबन 375 रुपए प्रति किलो
1: है।
0: जी, और अच्छा, किसान जो है बड़े आसानी से उसको पैदा करता है और खुशी खुशी आता है हमारे सेंटरों में और उसको बेच के अपनी जीविका कमाता है, और उस ग्रीन कोकून से हम आगे फिर सीड तैयार करते हैं।
1: बीज कैसे तैयार करते हैं?
0: बीज ग्रीन कोकून से तैयार करते हैं।
1: जी, कैसे, प्रक्रिया क्या होती है उसकी?
0: प्रक्रिया ये होती है, कोकून को कट किया जाता है, उसमें से प्यूपे को बाहर निकाला जाता है, फिर वो जो प्यूपे होता है उसका सेपरेशन किया जाता है मेल और फीमेल का, फिर कपलिंग कराई जाती है, फिर जो मेल है वो डाई हो जाता है और जो फीमेल है वो एग ले करती है, फिर उनको हम फ्रीज कर देते हैं।
1: अच्छा, तो फिर किसानों के लिए बांटते आगे?
0: हाँ, जैसे सीड हमारे पालमपुर में इस वक्त 2300 औंस जो है वो हम यहाँ पे बनाते हैं और तकरीबन 3000 औंस जो है वो बेंगलोर से लेते हैं। देखो, जो 1 औंस की कीमत है वो 650 रुपए।

0: रेशम कीट उत्पादन अच्छे तरीके से करे,
1: जी
0: तो विभाग जो है उसको पूरी मदद करता
1: पूरी
0: है
1: सहायता
0: और
1: करता है जी।
0: उसकी रोजी रोटी कमाने में, वो अपनी आमदनी बढ़ाने में जो है पूरा सहयोग करता है।
1: जी
0: जी अरविंद मेहता जी, आपने रेशम कीट उत्पादन के संबंध में हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी ता इस भेंटवार्ता दे बाद हाँ फिर ते चलना अपने लोक जानकार दी तरफ और सुनना एक और प्यारा दे लोकगीत।
1: जी।

0: इस प्यारे दे लोक गीत कने साड़ी कार्यक्रम बसने इथे ही खत्म हो करदा, पर जानते पहले देसी गीत की तकनीकी से हो रही है विपिन कुमार और दा कने प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल और अपने प्यारे दे सदस्य पंच जो कने
1: हरिया भाई जो दे इजाजत। अच्छा जी, जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को है।

0: अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सहयोग करेगी प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनाव में भाजपा की जीत को बताया कांग्रेस के लिए निराशाजनक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल से हिमाचल में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने लिए हैं कई ऐतिहासिक निर्णय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विश्वविद्यालय में छात्रावासों के निर्माण में सहयोग करेगी। बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, महाधिवक्ता अनूप रत्न और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनाव में भाजपा की जीत को कांग्रेस के लिए निराशाजनक करार दिया है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का दुर्ग रहे शिमला जिला में पार्टी का पंचायत चुनावों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में इन नतीजों की गंभीरता से समीक्षा और आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: जनार्दन का जनमत है, स्वीकार करना चाहिए, उसको हम एक्सेप्ट में समीक्षा करनी होगी। जयतिराज एक तरह से हार है, आपका बेस है, चाहे संगठन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को धरातल तक, अपनी स्कीम्स को, योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, उसमें अहम रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रहता है। तो निश्चित रूप में जो नुकसान हुआ है या जो परिणाम आए हैं, इसमें समीक्षा करना आवश्यक है।
0: रोहित ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, इसमें सरकार के 4 साल का कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंत्रिमंडल की बैठक सरकार में किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण स्थगित की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश के लोग आए दिन एक ना एक सुख शुल्क से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार के ज्यादातर आदेश और अधिसूचनाएं किसी न किसी सेवा को समाप्त करने, संस्थान बंद करने और शुल्क लगाने के लिए जारी हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब सरकार ने परिवार रजिस्टर की नकल के लिए भी शुल्क लगा दिया है, जबकि स्टाम्प से लेकर अन्य आवश्यक जनसुविधाओं की कीमतों को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रावधान किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और वर्तमान राजनीतिक हालात से विचलित हैं और उन्हें इस स्थिति से प्रदेश की जनता को अवगत करवाना चाहिए। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 17 सितंबर को राज्य के लगभग 8,000 बूथों पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के संयोजक विक्रम सिंह ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रत्येक बूथ पर प्रदेश की माताएं, बहनें, युवा, बच्चे और समाज के सभी वर्ग के लोग लगभग 100 दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री को दीर्घायु और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल दीप प्रज्वलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और विकसित भारत के उनके संकल्प में जनभागीदारी का सशक्त प्रतीक बनेगा। प्रदेश कांग्रेस के सिरमौर जिला प्रभारी धर्मेंद्र धामी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। धामी ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और कांग्रेस फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार है और इसके लिए सिरमौर जिला में बूथ बूथ पर जाएंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, अभियान शुरू किया गया है।
2: जिला सिरमौर से कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है कि बूथ बूथ पर जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। बहुत जल्दी सभी जो हमारी नई कार्यकारिणी जिला की बनी है उनको कार्यभार दिया। जोन वाइज और ब्लॉक वाइज ड्यूटीज लगाई जाएगी ताकि हम कांग्रेस पार्टी की जो है बूथ कमेटी जो है हमारी मजबूत बने, हमारा बूथ ज्यादा स्ट्रांग हो।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
4: अच्छा, कहाँ करवाई है जांच?
3: यही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
4: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
3: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
4: मैं आज ही जाती हूँ।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज हिमाचल में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में आज दिनभर बैंक बंद रहे और बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले धरने प्रदर्शन किए। शिमला में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि अब भी सरकार और बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से देशभर में बैंकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी।
6: अराउंड 96-97% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री की है आज पूरी स्ट्राइक पे है। आज की जो ये स्ट्राइक है इसके मुख्य दो मांगे हमारी है। पहली जो मांग है हमारी वो 5-day बैंकिंग को लेकर के, और जो दूसरा मुद्दा है वो PLI को लेकर है। ये इमीडिएट कारण बना और इसी को बात को लेकर के आज की जो ये एक सांकेतिक घाटे का हड़ताल है 3 दिन की, हम जैसे मैंने कहा 28-29-30 को करेंगे और उसके बाद हम 26 अक्टूबर से जो है टोटल इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने आज शमीरपुर के निकट हरनेड़ गांव में हिम कृषि योजना के तहत निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना के उद्घाटन अवसर पर कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ऐसे उत्पादों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि हरनेड़ सिंचाई योजना के आरंभ हो जाने से गांवों की लगभग 80 कैनाल भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने गांव वासियों से मुख्यमंत्री के चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि गांवों की लिकरोड़, रास्तों की मुरम्मत और पुराने कुएं के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मंडी मनाली फोरलेन सड़क पर अब यात्रा और सुगम हो गई है। इस सड़क पर बनी दो सुरंगों दियोड़ व हणोगी को आज से यातायात के लिए खोल दिया है। इन सुरंगों के शुरू हो जाने से मंडी से कुल्लू का सफर अब महज 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
7: करीब 4,466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस फोर लेन परियोजना में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये दोनों सुरंगें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे शुरू होने से भूस्खलन और जाम के लिए बदनाम 5-6 किलोमीटर लंबे घुमावदार हिस्से को बाईपास किया गया है। मंडी से कुल्लू की दूरी 78 किलोमीटर से घटकर अब 60 किलोमीटर रह गई है और सफर का समय भी लगभग 2 घंटे से घटकर 1

0: घंटे का रह जाएगा। हणों की सुरंग का वर्ष 2025 की मानसून आपदा में भारी नुकसान पहुंचा था। इसे रिकॉर्ड 60 दिनों में करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन सुरंगों के खुलने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। इन सुरंगों के खुलने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सेब उत्पादों को बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार जनाधार खो रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब इन चुनावी नतीजों का असर विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। सुरेश कश्यप ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर चुनावी साल में जनता को बरगलाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया।
2: जो वायदा प्रदेश की जनता से किया गया था, 22 लाख महिलाओं से किया गया, यहाँ की प्रदेश की जनता से 300 फ्री बिजली देने का वायदा हुआ था, 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष देने का जो वायदा हुआ था, गोबर और दूध का मूल्य जो है वो देने की बात हुई थी और बहुत सारे दूसरे वायदे भी हुए थे, लेकिन ये सारी घोषणाओं का क्या हुआ? और अब जब चुनावी वर्ष में जब 1 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे समय में फिर से जनता के सामने झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इसका कड़ा जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय के चुनाव में देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से अपनी सरकार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सहयोग करेगी प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनाव में भाजपा की जीत को बताया कांग्रेस के लिए निराशाजनक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल से हिमाचल में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने लिए हैं कई ऐतिहासिक निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, देश गान सुनिए।

0: श्रोता अभी देशगान सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज आज हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की गाई इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की गाई ये गजल। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं सावरी ब्रदर्स, सोनू निगम और अलका के मिलीजुली आवाजों में ये कव्वाली। मिलीजुली गीतों का कार्यक्रम सबरस, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सतिंदर सरताज का गाया ये पंजाबी गीत।
1: Yeah, it is, and I'm leaving.

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत। सोनू निगम, विनोद कुमार राठौर और साथियों की मिलजुली आवाजों में बॉर्डर फिल्म से ये देशभक्ति गीत।

मिशन मजनू। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम का गाया हुआ ये देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए

0: भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल

0: फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं चालबाज फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत।

1989 में रिलीज़ हुई चालबाज एक ऐसी फिल्म है जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशन है और सबसे ख़ास है डबल रोल का ज़बरदस्त अंदाज़।

फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई श्रीदेवी ने, जबकि उनके साथ नजर आए सनी देओल और रजनीकांत। फिल्म का निर्देशन पंकज पराशर ने किया था। चलिए अब बात करते हैं कहानी की। फिल्म की कहानी दो जुड़वा बहनों अंजू और मंजू के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों का चेहरा एक जैसा है लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। अंजू एक सीधी सादी और डरपोक लड़की है, जबकि मंजू बेहद चुलबुली, निडर और अपने अंदाज में जिंदगी जीने वाली लड़की है। कहानी में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों बहनों को एक दूसरे की जगह लेनी पड़ती है। यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं चालबाज फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत। इस फिल्म के लिए गीत गाए अमित कुमार, कविता कृष्णा मूर्ति, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज और जॉनी लीवर ने। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। दोस्तों, चालबाज की सबसे बड़ी खासियत थी श्रीदेवी का डबल रोल। एक ही फिल्म में उन्होंने दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्वों को निभाया और दोनों किरदारों की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और हाव भाव भी अलग रखे। यही वजह है कि फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ दर्शकों को लगातार यह उत्सुकता बनी रहती थी कि अब आगे क्या होगा। और फिर आता है कहानी में दिलचस्प मोड़। अंजू अपनी ज़िंदगी में डर और दबाव के बीच जा रही थी है, और जबकि मंजू किसी भी मुश्किल का सामना अपने चुलबुले और बेबाक अंदाज में करती है। जब दोनों की ज़िंदगी आपस में उलझती है तो परिवार और आसपास के लोगों को भी कई बार समझ नहीं आता कि आखिर सामने कौन है, अंजू या मंजू। यही गलत फहमियाँ फिल्म में हास्य पैदा करती है और कहानी को आगे बढ़ाती हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कारवा सुरों का। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लज्जा फिल्म से।

ये संगीत है A.R. रहमान का, बोल है आनंद बख्शी के, आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की, नायक फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

सात रंग के सपने। इस फिल्म में आइए अब सुनते हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक को। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने।

कारवां सुरों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया के साथ, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

मृत्युदाता फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और विनोद राठौर की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कारवां सुरों का। आइए अब सुनते हैं बॉलीवुड बीट्स नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति पठान फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से। इस गीत को गाया है नेहा बासिन ने।

आरक्षण इस फिल्म में। आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल को। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और गीत लिखा है प्रसून जोशी ने।

बॉलीवुड बीट्स, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, कार्यक्रम का अगला गीत प्यार है तो है। इस फिल्म से आवाजें हैं अरिजीत सिंह और इशिता विश्वकर्मा की। ये संगीत है एनी का और गीत के बोल लिखे हैं धीरज कुमार ने।

एम तुराज के बोल थे संजय लीला भंसाली का संगीत और श्रेया घोषाल की आवाज का जादू। हीरा मंडी फिल्म से ये गीत था।

बॉलीवुड वीड्स ये कार्यक्रम नई फिल्मों से अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत, और ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। आकाशदीप फिल्म से संगीत दिया है चित्रगुप्त ने और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

बरखा। इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है चित्रगुप्त ने, और बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के।

0: अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ और कौन फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: जहरीला इंसान, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

चित्रपट संगीत पुरानी फिल्मों से गीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रंग हजार। इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

तकदीर इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति भरोसा फिल्म से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है रवि ने।

0: रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रतिगी समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।